भगवान श्री राम वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां उनका राज्याभिषेक होना है। हनुमान जी तो वानर थे, वन में उनका वास था।

प्रेम से बोलिए श्री धरती महारानी माता की जय। वी परफॉर्म कलश पूजा, कलश पूजा और कलसा पूजा as we say honors the five elements that constitute all of God's creation. With the right hand, the yagyakarta will touch the top of the kalsa. Let us join from wherever you are. Please witness kalash puja.

0: जगदम्बिका दुर्गा देवी महारानी माता की जय। दिस मॉर्निंग इट इज इंडीड अ प्लेजर टू कंटिन्यू टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट एंड अ स्पेस एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर यंग चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट टू अस्यूम लीडरशिप रोल्स एंड हियर द आश्रम. What a more opportunity, what more of an opportunity rather, is there to create that for children. One of our young Kirtan Acharyas, please put your hands together as we welcome to deliver his pravachan, young, handsome Samir Sohanji. Samir?
1: Sitaram, respected Pandaji, elders, brothers and sisters, all the devotees.

प्रेम सबलो श्री जगदम्बिका दुर्गा देवी माता की जय. फॉर दोस ऑफ यू हु ब्रॉट योर प्रसादम दिस मॉर्निंग टू ऑफर, प्लीज फॉर्म अ ऑर्डरली लाइन एंड यू विल गो स्ट्रेट टू द दुर्गा देवी मां मूर्ति एंड मेक द ऑफरिंग्स. एट दिस टाइम लेट्स जॉइन इन ऑफरिंग द हवन एज द फायर इज ऑलरेडी लिट. लेट्स मेक द हवन ऑफरिंग एंड देन वी विल फॉलो विद कीर्तन. जस्ट गायत्री देवी ऑफरिंग दिस मॉर्निंग.

की लक्ष्मी देवी महारानी माता की, सरस्वती देवी महारानी माता की, मैया गायत्री देवी महारानी माता की, शिव शंकर भगवान की, जगदम्बिका दुर्गा देवी माता की, शैल पुत्री देवी महारानी माता की, पवन पुत्र हनुमान स्वामी बाबा की, मैया काली देवी महारानी माता की, सत्य साई बाबा भगवान की, शिरडी साई बाबा भगवान की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, अयोध्या राम लला की, पंचमुखी हनुमान स्वामी बाबा की, मैया लिंग भैरवी देवी महारानी माता की, सीता राम चंद्र भगवान की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, अरे शिवलिंगम शिवलिंगम महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते, हर हर।